बोलो जी सतनाम श्री वाहिगुरु। वाहिगुरु जी अक्यो अहंकार, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भौत जी सहाय वार, श्री भौत जी की पातशाही दसवें प्रथम भगवती सिमरख है। गुरु नानक लई ध्याए फिर अंगद गुर ते अमरदास, रामदास से हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जे डिठै सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरै कार नौन दे आवे ताए। सब ताई हुई सहाय दसवें पातशाह, तन तन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। ओ सब ताई हुई सहाय दसों पातशाहियों की जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे पवित्र पाठ दीदार दा ध्यान तर खालसे। सब बोलो जी वाहेगुरु। पंजा प्यारिया चौं साहबजादियां, चालिया मुक्तियां, अठियां जपियां तपियां, शहीद सिंघां सिंघणियां जिन्हां नाम जपया वंड छकिया, देख चलाई तेग वाही, देख के अंडट कीता तिन्हां गुरमुख प्यारियां सचारियां दी कमाई दा ध्यान तर खालसे। सब बोलो जी वाहेगुरु। जिन्हां सिंघां सिंघणियां धर्मे सी दिते, बांध बांध कटाए चरखड़ियां ते चढ़े, आरिया नाल तंचर वाए, उबल दियां देगां विचो बाले गए, खोपरियां लुहाईयां, गुरुद्वारियां दी सेवा संभाल ली, कुरबानियां कीतियां, तेरे भाणे नूं मिठा करके मन्निया, असहे ते कह सहार दे सीधो सिकिद के सा सवासा संघ नभाई, तरमनी हारिया तिन्हां समूह शहीद सिंघां सिंघणियां दी कमाई दा ध्यान तर खालसे। सब बोलो जी वाहिगुरु। पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारिया जी का ध्यान तर खालसे। सब बोलो जी वाहे। प्रथम खालसे जी की अरदास है जी, सरबत खालसे जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चेतावे चेतावन का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रहा, दे ते फतेह बिरद की पैज। पंथ की जी श्री साहिब जी सहाय, खालसे जी के बोल वाले खालसे। सब बोलो जी वाहे। सिखा नू सिखी दान, केस दान, रह दान, विवेक दान, वसाह दान, भरोसा दान, दाना सरदान, नाम दान, श्री अमृतसर साहब जी के इशनान, चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुगा टल, धर्म का जयकार, खालसे जी के बोल वाले खालसे। सब बोलो जी वाहे। सिखा ना मन नीवा, मात उची मादे राखे, आप अकाल पुरख अंतर जामे, गुरु गरीब निवास जी पातशाह पंथ सदा सहाय दतार पिता जी। श्री ननकाणा साहब और गुरुद्वारे जिन्हों तो पंथ नूं छोड़िया गया, सेवा संभाल अपने खालसा जी नूं बख्शो जी। नमाण्या दे माण, नदाण्या दे ताण, ने उट्टियां दी उड़ने, आसरन दे आसरा, धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी पातशाह जी आप दी पार बख्श रहमत कृपा रसका आप दे हजूर सोदर दे दीवान सजे ਸਜੇ ਸਵਾਨਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਚੌਂਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੋਧਰ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਖਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਘਟਾ ਪੁੱਛੋ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਪੜੀ ਸੁਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ, ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹਾਰਜੀ, ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਪੇਟਾਵਾਂ ਰਸਤਾ ਆਦਿਕ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਪ੍ਰਿਆਤਕੜਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਵਰਤਾਉਣਾ, ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਪੰਥ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਪ੍ਰਿਆਤਕੜਾਂ ਟੁੱਟ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਗਾ ਹਾਜ਼ਰਾ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਦੇ ਸੰਦ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ, ਐਸੋ ਦੀਵਾਨ ਸਾਜਰੇ ਨੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਚੇਤਾ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ

तुमरी कृपा में सुख कनेरे कोई न जाने। ऊचे ते ऊचा सगल समगरी तुमरे तुम ते होए सो तुमरी गात मेत तुम ही नानक दास तुमरी गात मेत तुम ही नानक दास। बोलो जी सतनाम श्री वाहिगुरु। वाहिगुरु जी एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री बहुत जी सहाय वार श्री बहुत जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई त्याए फिरंगत गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय अर्जन हर गोबिंद सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिठै सब दो जाए तेग बहादुर सिमरै कार नौन दे आवे ताए सब थाई होई सहाय दसवें पातशाह। धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ओ सब थाई होई सहाय दसो पातशाहियों की जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे पवित्र पाठ दीदार दा ध्यान त्रखाल से सब बोलो जी वाहे। पंजा प्यारिया चौ सब जादिया चालिया मुक्तिया अठिया जपिया तपिया शही सिंघा सिंघणिया जिन नाम जपया वंड छकिया देख चलाई ते गवाई दे के निट कीता तिना गुरमो प्यारे सचारे की कमाई का ध्यान त्रखाल से सब बोलो जी वाह। जिन्हां सिंघां सिंघणियां धर्मे सीध दिते बांध बांध कटाए चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल तन चरवाए उबलदियां देगां विचों उबाले गए खोपरियां लुहाईयां गुरद्वारियां दी सेवा संभाली कुरबानियां कीतियां तेरे भाणे नूं मिठा करके मन्निया असह ते कहिगा सहार दे शहीद होए सिकिद केसा सुवासा संग नभाई तरम निहारिया तिन्हां समूह शहीद सिंघां सिंघणियां दी कमाई दा ध्यान त्रखालसे सब बोलो जी वाह। पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारिया जी का ध्यान त्रखालसे सब बोलो जी वाह। प्रथम खालसे जी की अरदास है जी सरबत खालसे जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेतावे चेतावन का सदका सर्व सुख होवै जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचरिया दे ते फतेह बिरद की पैज पंथ की जी श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले खालसे सब बोलो जी वाह। सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान वसाह दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान श्री अमृतसर साहब जी के इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुगो अटल धर्म का जयकार खालसे जी के बोल बाले खालसे सब बोलो जी वाह। सिखा दा मन नीवा मात उची मरदे राखे आप काल पुरखंतर जामी गुरु ग्रीव निवास जी पातशाह पांदे सदा सहाय दार पिता जी ओ श्री ननकाणा साहब होर गुरुद्वारे जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया सेवा सवाल अपने खालसा जी नूं बख्शो जी। निमाणिया दे माण दताणिया दे ताणने ओटियां दी ओड़ने आसन दे आसे धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पातशाह जी आप जी पार बख्श रहमत कृपा दा सदका आप दे हजूर शामां दे दीवान सजे सजे दवाना विच आप दे हर जस होए ने कीर्तन कथा ढाडी बारा अते आदि सेवा करदिया होईयां फुल्लां बख्श लैणियां जथियां नूं चढ़दी कला बख्श लई पढ़ी सुनी बाणी दा भाव सरबत संगतां दे हिरदियां विच वसाउणा सरबत संगतां दी हाजरी तिल फुल पिटावां रस्तां कीर्तन भेट माया दातारी सब दी कीती होई सेवा अपने दर ते प्रवान करनी सिर ते मेहर भरिया तखणा तंदुरुस्तियां बख्शणियां परिवारां विच सुख वरतौणा सरबत संगतां दे कारोबारां दी बरकतां दरों करों सिखी सिद्ध भरोसा नामदान बख्श के निहाल करना सेवादारा नूं चढ़दी कला बणी पंद दे सिर ते मेहर भरिया तखणा अतुट गुरु के लंगरां दी सेवा होरी दर प्रवान करनी इस दीवान दी समाप्ति मेहर करो होईयां फुल्लां बख्श लैणियां पवित्र हुक्मनामा बख्श के निहाल करो जी सही गुरम प्यारे मेलो जिन्हां मिलिया तेरा नाम चेता वे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा गया भई अकाल की
ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਖੁਆਰੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਂਗੇ ਖੁਆਰੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਂਗੇ ਬਜੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

Tanamai brusapati. Tanamai brusapati. Dharmate thate darbar. Tujh bin surat kare ko meri. दर्शन दीजे खोल के वार तुम धन धनी उदार त्यागी श्रावणान सुनियत सुजस तुमार मांगो काहे रंक सब देखो तुम ही ते मेरो निस्तार जय दियो नामा बेप सुदामा

मेल मेल सखी गुण कहो मेरे प्रभ के, ले सतगुर की मात धीर। जान नानक की हार आस पुजावो,

मेल मेल सखी गुण कह मेरे प्रभ के, ले सतगुर की मत धीर, जन नानक की हार आस पुजाव, हर दर्शन शांत शरीर, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गोंड महला चौथा, हर दर्शन को मेरा मन बहुत तपत है, ज्यो त्रिखावंत बिन नीर, मेरे मन प्रेम लगो हर तीर, हमरी बेदन हर प्रभ जाने, मेरे मन अंतर की पीर, धन वाहिगुरु साहब जी, धन वाहिगुरु साहब जी। श्री राग के संत महला पंजवा, एक ओंकार सत गुर प्रसाद डखना।

दर्शन्त चरण कमल स्यों प्रीत रीत संतन मन आवे जियो। द्वितीया भाव विपरीत अनीत दासा न पावे जियो। दासा न पावे बिन दर्शावे एक खिन धीरज क्यों करे। नाम बिहुना तन मन हीना जल बिन मछली ज्यो मरे। मिल मेरे प्यारे प्राण आधारे गुण साध संग मिल गावे। नानक के स्वामी तार अनुग्रह मन तन अंक समावे डखना। सोहंदड़ो हब ठाए कोय ना दिसे डूजड़ो खुलड़े कपाट नानक अस्त गुर पेट ते संत। तेरे बचने अनुपे अपार संतन आधार बाणी बिचारी जियो। सिमरत सास गिरास पूर्ण विश्वास क्यों मना बिसारी जियो। क्यों मना बेसारी है निमख नहीं टारी है गुणवंत प्राण हमारे। मन बांचत फल देते स्वामी जी की वृथा सारे।

सोहर्षदाते आइए तिस बिन अवरना कोए, जो मोह माया चित लाए दे से शिव छोड़ चले दुख रोए। जान नानक नाम ते आया, हर अंत सखाई होए। मैं हर बिन अवर न कोए, हर गुर शरण आई पाई वण जा रिया। मित्रा वट पाग प्राप्त होए रहाओ।

जब लग जोबन सास है तब लग नाम ते आए, चलदियां नाल हर चलसी हर अंते लै छड़ाए। हाँ बलिहारी तिन कौ जिन हर मन उठायाए, जिन हर हर नाम न चेते ओ से अंत गए पछताए।

मन हर हर जपन करे, हर गुर शरण आए भज भौ जिंदु, सब कल विख दुख पर हरे रहाओ। घट घट रमैया मन वसै, क्यों पाइये कित भत, गुर पूरा अस्त गुर भेटिए, हरे आए वसै मन चित।

तू सच्चा साईं, तू आपे आप वर्तदा सब नहीं थाई, हर तसे ते आवो संत जनो जो लय छड़ाई। श्लोक माला पहला फकड़ जाते।

सपत दीप सपत सागरा नाम खंड चार वेद दस अष्ट पुराणा हर सबना विच तू वरतदा हर सबना पाणा सब तुझे ते आवै जी जंत हर सा रंग पाणा जो गुरमुख हर आराध दे तिन्हों कुरबाणा।

हूं। कलो मसाजनी क्या सजाइये, हृदय ही लिख ले हो, सदा साहेब के रंग रह कबू न टूट स्नेह। कलो मसाजनी जायसी, लिखिया पी नाले जाए, नानक शह प्रीत न जायसी, जो तुर छोटी सच्चे पाए, महला तीजा। नदरी आमदा नाल ना चलई, वेखो को व्यो पाए, सतगुर सच दृढ़ाया, सच रहो लिवलाए, नानक शब्द दी सच है, करमी पल्ले पाए पौड़ी।

मुकत कराइंदा एक निमकड़ी कर ख्याल हार तुदो बाहर किश नहीं गुर शब्दी वेख निहाल श्लोक माला तीजा हुक्म ना जाने बहुता रोवे अंतर तोखा नींद ना सोवे जे तन खसम चले रजाई दर कर शोभा महल बुलाई नानक करमीए मत पाई गुर प्रसादी सच समाई महला तीजा मन मुख नाम विहुणिया रंग कसुंबा देख ना भुल इसका रंग दिन थोड़िया शोषा इसदा मुल

जिस तो दें तिस सब किश मिले, एक ना दूर है पास, तुद बाजो थाओ को नाही, जिस पासो मंगिए मन वेखो को निरजास। सब तुधै नौ साला हंदे, दर गुरमुखा नो प्रकाश। श्लोक माला तीजा, पंडित पढ़ पढ़ उच्चा कूकदा। माया मोह प्यार, अंतर ब्रह्म न जी नहीं, मन मूर्ख गावार।

गुरमति जम जो न साकै साचै नाम समाया सबे आपे आप वर्तै करता जो पावे सो नाय लाया। जन नानक नाम लै ता जीवै बिन नाम किन मर जाया पौड़ी। जो मिलया हर दीबाण स्यों सो सबनी दीबाणी मिलया जिथे यो जाए तिथे यो सुरखुरु उसके मुंड डिठे सब पापी तरिया। ओ से अंतर

गुर वेण सहज न आवई, लोभ मैल न विचों जाए, खिन पर हरना मन वसै, सबे 68 तीर्थ नाए। सच्चे मैल न लगई, मल लागै दूजे पाए, धोती मूल न उतरै, जे 68 तीर्थ नाए। मन मुख कर्म करे अहंकारी, सब दुखो दुख कमाए। नानक मैला उजल ता थी, जा सतगुर माए समाए। महला तीजा, मन मुख लोक समझाइए, कदों समझाया जाए। मन मुख रलाया ना रलै, पै किरत फिराए।

जो इच्छे सोलह है सच्चे शब्द सुभाए। अमृत नाम सदपुंची आए गुरमुखार कमाए, विण मन्ने जे होरी नाल लुजना जासी जन्म गवाए। मन मुखे मन हटारिया कूड कुसत कमाए, गुर प्रसादी मन जने हर से तिलवलाए। नान गुरमुख सच कमावे मन मुख आवे जाए, पौड़ी हर के संत सुनो जन पाई, हर सतगुरु की एक साखी। जिस तुर भाग होवे मुख मस्तक तिन जन ले हृदय राखी, हरे अमृत कथा श्रेष्ठी उत्तम गुर वचनी सहजे चाखी। तै भया प्रकाश मिटिया दियारा ज्यो सूरज रैण के राखी। अदृष्टिया गोचर अलख निरंजन सो देखिया गुरमुख आखी। श्लोक महला तीजा। सतगुरु

जित सदा सुख होवे दिन राति हर हर नाम जपो मन मेरे चित सिमरत सब कल विख पाप लहाती। हर हर नाम जपो मन मेरे चित दालत दुख भुख सब लै जाती। हर हर नाम जपो मन मेरे मोह गुरमुख प्रीत लगाती। जित मुख भाग लिखिया तुर सच हर तित

नानक बिन सतगुर सेवे मोख न पाए पौड़ी सतगुर जिनी त्याया से कढ़ न सवाही सतगुर जिनी

क्या हंस क्या बगुला जा को नदर करे जो सपावे नानका का को हंस करे पौड़ी। कीता लोड़ी है काम सो हर पे आखी है कार्ज दे सवार सतगुर सच साखी है।

एत संगत नाही मरना हुकम पछाण ता खसमें मिलना रहाउ दूजा श्री राग त्रिलोचन का। माया मोह मन आगलड़ा प्राणी जरा मरण प विसर गया कुटंब देख बिकसे कमला ज्यो पर कर जो है कपट नरा दूडा आयो जमे तना तने आगलड़े में रहन न जाए। कोई कोई साजन आय कह मिल मेरे बिठ लाल बाहड़ी बलाए मिल मेरे रमैया मैं ले छाए रहाओ। अनक अनक भोग राज बिसरे प्राणी संसार सागर पै अमर पया माया मूठा चेत सनाही जन्म गवायो आलसिया। बिकम कोर पंथ चालना प्राणी राव सस तैना प्रवेशं माया मोता बिसर गया जा तजियले संसारं। आज मेरे मन प्रकट पया है पेखियले धर्म राओ तै करदल करण महाबली तने आगलड़ मैं रहन न जाए।

श्री राग भगत कबीर जियो का आचार्य एक सुनोरे पंडिया अब किस कह न जाय स्वर नर कर्ण गंधर्व जिन मोहे त्रिपवन मेख लीला। राजा राम अनाथ किंगुरी बाजय जाके दृष्टनाथ लिव लागय रहाउ। पाठे गगन सिंह आर चुंगिया कन कल सिख पाया तस्मै तार चूए अत निर्मल रस मै रसन चुवाया। एक जो बात अनूपनी है पवन प्याला साजया तीन पवन में एको जोगी कहो कवन है राजा। ऐसे ज्ञान प्रकटया पुरुषोत्तम कहो कबीर रंग राता और दुनि सा परम पुलानी मन राम रसायन माता। ऐसे ज्ञान प्रकटया पुरुषोत्तम कहो कबीर रंग राता और दुनि सा परम पुलानी मन राम रसायन माता। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठे गुरु प्यारे गुरु सवारे अति सत्कार योग सतसंगी जनों वट पा गया जिथे आप जिया ने लड़ीवार चल रहे श्री सहज पाठ के राही पावन बाणी का आनंद माणिया है। समा है शब्द चौंकी आसा की वार दे कीर्तन का सेवा निभाउण के सत्कार योग भाई हरजिंदर सिंह जी बीट साहब वाले और तिना पासों पावन बाणी के शब्द कीर्तन श्रवण करिए जी। भुलना चुकां दी खिमा आप संगतां दा धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।

योग शब्दम ज्ञान शब्दम योग शब्दम ज्ञान शब्दम वेद शब्दम ब्राह्मण खत्री शब्दम सूर शब्दम सूद्र शब्दम प्राकृत सर्व शब्दम एक शब्दम जेको जाने वे।

अखी सूतक वेखना परत्रे परतन रूप कनी सूत कन पहला इत बारी खाए नानक सादमी।

सब जी। धन वाहिगुरु साहिब जी। ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना, सार ना जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। धन वाहिगुरु साहिब जी। गोंड महला चौथा, हर दर्शन को मेरा मन बहुत तपत है। ज्यों त्रिखावंत बिन नीर,

0: मेल मेल सखी गुण कहो मेरे प्रभु के, ले सतगुर की मत धीर। जान नानक की हार आस पुजावो, हार दर्शन शांत शरीर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठे गुरु प्यारे, गुरु सवारे, अति सत्कार योग सतसंगी जनों वडभागे, जिथे आप जिया ने गुरु दर दे सवारियां पासों शब्द चौंकी आसा की वार दे कीर्तन सरवण कीते ने। सरबादे भले की अरदास उपरंत सतगुरां ने जो पावन मुख वाक की दात बख्शिश की है, पवित्र उपदेश आप संगतां ने बड़े प्रेम अदब सत्कार सहित सरवण किए हैं। समा है पावन मुख वाक की कथा विचार दा। सेवा निभाउणगे सत्कार योग भाई गुरशरण सिंह जी चीमा, भलके गुरद्वारा साहब विखे नगर जनेतपुरे दीयां संगतां वल्लों ते सेवक परिवार वल्लों दो श्री अखंड पाठ साहिब आरंभ होणगे, जिन्हां दे भोग ऐतवार सवेरे 9:30 पैणगे, उपरंत हफ्तावरी दीवान सजणगे। नगर निवासियां ते परिवारां वल्लों बेनती है आप जी ने दर्शन देण दी कृपालता करनी जी। सरवण करदे हां पावन मुख वाक दी कथा विचार भाई गुरशरण सिंह जी होणा पासों भुल्लां चुक्कां दी खिमा। आप संगतां दा धन्नवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: सतनाम।

शुद्ध कवन पर होए बो सुच कुंचर बिद व्यवहार। रव प्रगाश रजनी जथा गत जानत सब संसार। पारस मानो तांबो शोए कनक होत नहीं बार। परम परस गुर भेटिया पूर्व लिखत ललाट। उन मन मन मन ही मिले छुटकत बजर कपाट।